और वो जो दीवार थी सो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे और उसके नीचे उनका खजाना मदफून था और उनका बाप एक नेक आदमी था, तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए, ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक ट्रैक और आप लोगों के लिए मैं शामिल करने लगा हूँ यहाँ पे, और इसके साथ कुछ थोड़ी सी मैं मिक्सिंग करूंगा, देन फिर आगे चल के मजीद बातें करेंगे, मजीद गुफ्तगू होगी। साथ रहिएगा, जाइएगा मत मत मत मत मत जाइएगा, कहीं मत जाइएगा। आहा, क्या कहने जी, क्या बात है यार। ये ट्रैक तो खैर जो है ना, अच्छा ट्रैक है, लेकिन ये उस तरह से फुल बीट मुझे क्यों नहीं दे रहा, मतलब प्रॉपरली ये कन्वर्ट हुआ हुआ है जी, स्लो वर्जन में जो है ना कन्वर्ट हुआ हुआ है। सो इसका ओरिजिनल नंबर मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ आप लोगों के लिए, आप दोस्तों के लिए। साथ रहिएगा, ओरिजिनल आ गया भाई। यस

भैया भाभी के लिए जो है ना बहुत सारी दुआएं जी, और आयजा को बहुत सारा प्यार जी, और सलाम कबूल हो आपको। फरियाल हमारा साथ दे रही हैं जी अगेंस्ट टोपी से, बहुत बहुत शुक्रिया फरियाल, थैंक यू सो मच कि आपने हमारा साथ दिया अगेन से, और अगेन से आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी और हमारे इस प्रोग्राम में आए, अपने होने के एहसास दिलवाया आपने।

कैंडिडेट बनने सरगंद की गई सी क्विज बॉक्स कैंडिडेट विनर द विनर ऑफ जमासरा बॉक्स नंबर 16 को निसार लला खुला हुई जी द एहतिताम यानी द बॉक्स एहतिताम पजीर बॉक्स नंबर 16 जुमंग रजी खुद बॉक्स नंबर 16 की सूख दी आखिर जमासर कुलावी गया अदागी बॉक्स जमासर कुलावी गई जी हमें खता सोला दस ना बॉक्स नंबर बॉक्स नंबर 16 के Zumangsera da na de de de da da Zumangsera for box number 16 ke de na for box number 16 ke Zumangsera da aw Zumangsera winner de Gulur Zumangsera box number 16 ke Zumang na la la la aw box number 15 Zumangsera the one and only Baradona Quiz box candidate, Baladona winner, the one and only, the Sawabai Pasima, Zumang Sera Suleiman, winner, box number 16 ki, Noor Zamana, la la la, aur box number 15 ki, Suleiman Zamasera, the day mukabale, winner.

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM

गर्मी लगन ढेर ज्यादा बेनतहा कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल मदरसों या माशुमान पकोर किलो भी कवि या कात बाहर पिंजू मिनट दोपहर बराय मेहरबानी बेलडोना सन ब्लॉक मख बांधे लगवई बेलडोना सन ब्लॉक इस्तेमाल अवई जका

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।